दान करो प्रतपारम। हमरे दुष्ट सब तुम कावो, आप हां दे मोय बचावो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करे, सब बैरन को वास करे। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ। सेवक सेखी हमारे तारिये, चुन चुन शत्रु हमारे मारिये। आप हां दे मुझे भरे है, मरण काल का त्रासन भरे है। हु जो सता हमारे पच्छा, श्री हस्तु जो करे और अच्छा। राख ले मैं राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव की यो, वेदराज ब्रह्मा जू थी यो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैन जशन उपजायो। आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रुन को पलमो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सबर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक के पीर पछान, काट काट के पट पट की जान। जाबुद कर करा कर तारा, पर जा तर तब दे अपारा। जब या करख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। जेते बदन श्रेठ सब तारे, आपे अपने बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कृपाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव। वापे अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन ते तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कह बेत सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कई भूपा। अंडज जेरज से तज किने, उत भुज खान बहोर रच दिने। कहो फूल राजा हुए बैठा, कहो समट पयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाय चंपव, आज जुगा स्वरूप से अंपव। अबर अच्छा मेरी तुम करो, सिख्यो वार सिख संगरू। दुष्ट जिते उठवा ते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तो जितव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुगत है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सबटारे। जो काल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रच्छा होए ताए सब काला, दुष्ट वरिष्ठ ट्रै तत काला। कृपा दृष्ट तन जाय निहरिहु, ताके ताप तनक मोह हरिहु।

बारम। जिन नार नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दुख ते रहा, खड़क केत में शरण तिहारी, आप हां दे लियो बारी। सरब ठौर मोहो सहाय, दुष्ट दुख ते लियो बचाई, सवैया पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सब है, बहुभेद कहे हम एक न जान्यो।

आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन बजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावणे आईयां, शब्दोतां गावो हरि केरा, मन जनी वसाया, कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया।

तर्क ना चा भ्रमिया चा केशवा बचौनी अये मये एक आन जियो पिंधी उभकले संसारा प्राम प्राम आए तुम चे द्वारा तू कौन रे मैं जी नामा हो जी आला ते निवारण जम कारणा पिंदी उभकले संसारा प्राम प्राम आए तुम चे द्वारा तू कौन रे मैं जी नामा हो जी आला ते निवारण जम कारणा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु स्वारे, अति सत्कार योग सत्संगी जनों वट पा गए, जिथे आप जी ने संध्या समय में मुख रखद शब्द चौंकी उपरंत सोदा रहरा साहब जी की पावन बाणी के पाठ सरवण किए ने। सरबादे भले की अरदास उपरंत सतगुरां ने इस मौके से जो पावन मुख वाग की दात बख्शिश की है, पवित्र उपदेश आप संगत ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित सरवण किए हैं। सतगुरु कृपा करन बख्शिया होया उपदेश साढ़े जीवन का आधार बन सके और असी गुरु आशे मुताबक सच्चारा जीवन बतीत कर सकी। समा है गुरबाणी शब्द कीर्तन का, सेवा निभाउणगे भाई हरजिंदर सिंह जी बीड़ साहब वाले। अज दे दीवान भाई साहब दे आखिरी दीवान ने, लगभग पिछले एक महीने तो आप संगतां दी गुरबाणी कीर्तन द्वारा सेवा कर रहे सन। आप संगतां ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित बैठ के भाई साहब जी दे दीवान सरवण करन दी कृपालता करनी जी। आओ सरवण करिए गुरबाणी शब्द कीर्तन भुला चुकां दी खिमा। आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जग सच की कोठड़ी सच का विश्वास। एक ना हुक्म समाए ले, एक ना हुक्म करे विनाश।

0: कहो नानक सच त्याई है, सुच होवै तां सच पाईऐ पौड़ी।
1: चेतें सब को एक नजरी हेठ चलाइंदा, आपे दे वड़ियाई आपे करम कराइंदा, वड्डो वड्डा वड़मे दिने

साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग